0: बड़ दुखे कहीं टाउ को दुखनी कहीं पेट दुखनी के दुखे आओ दुखे आओ झन ये बेला पखाला लगे हैरान होने कह जाने के करने के नगर्ने कहीं बिरामी भर कई मेलो मिशी फैलि
1: बुआ चीर नगर्नो झट्ट सुभाष मेडिकल फर्मा में गईहाल यही बेसी शहर को सेरा चोक देखे कारटार जाने बाटो तीन जम बरू
0: हुन्छ बुहारी लौ गइहालम साह्रै गाह्रो भयो।
1: सुभाष मेडिको फर्मा बेसी शहर नगरपालिका आठ सेरा
2: यहाँ अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै उचित परामर्श दिइन्छ। सबै खाले औषधिमा विशेष छुटको व्यवस्था छ। प्रोपाइटर सुभाष दनाई सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9845664093।
3: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज।